0: तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कह पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी।
1: Yarından sonra onu da kutsaman gerekecek.

0: तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो इंची टेप से ना पैगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित करे देख
1: हाँ दिखी

0: Saçlarını uzat bence. Hepsi arkadan koşar.
1: Bir gergedan güç kullanır. Ama kaplan hem güç hem de teknik kullanır. Kaplan olun. Gergedan değil. Anlaşıldı mı?
2: रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों धड़क धड़क के धड़कनों की चल रही की लहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों धड़क धड़क के धड़कनों की चल रही की लहरिया
0: Akşam dışarı çıkalım mı?
2: Canuna canuna kyun zara sa mosam sar pira hai ya mera mood maskara
0: Bir taneden bir şey olmaz.